0: अपने घर को छोड़ने से पहले अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को अच्छी तरह बंद कर लें, और अगर सिक्योरिटी अलार्म मौजूद है तो इसे भी ऑन कर दें और तसल्ली कर लें कि आपका घर चोरों से महफूज है। इंस्पायर FM कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
1: From the heart of Bedfordshire in Luton, you're listening to Inspire FM on 105.1 FM and globally at www.inspirefm.org.

0: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Top's Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम और तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK ऑफिस 03001234,
2: बख्शिश तेरी आंखों की तरफ देख रही है, मोहसन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। मैं रोज़गुल बज़्म-ए-नात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ हर जुमातुल मुबारक। आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी आवाज़ में हमद या नात दूसरों की समातों की नज़र कर सकते हैं, तो सुनते रहिए इंस्पायर FM 105.1
3: एवरी फ्राइडे एट 11 AM।
4: From the studios of Inspire FM, the time is now 7:30.

तो तुम हमारे साथ इसमें शरीक होगे और उससे अपना हिस्सा पालोगे। इस पर अल्लाह ताला ने ये वही नाजिल फरमाई कि कुल या अय्युहल काफिरूना। इब्ने जरीर, इब्ने अबी हातिम, इब्ने हिशाम ने भी सीरत में इस वाक्य को नकल किया है। वहब बिन मुनब्बेह की रिवायत है कि कुरैश के लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अगर आप पसंद करें तो एक साल हम आपके दीन में दाखिल हो जाएं और एक साल आप हमारे दीन में दाखिल हो जाया करें। अब्द बिन हुमैद, इब्ने अबी हातिम। इन रिवायात से मालूम होता है कि एक मर्तबा एक ही मजलिस में नहीं बल्कि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मवाके पर कुफार कुरैश ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस किस्म की तजवीजें पेश की थीं और इस बात की जरूरत थी कि एक दफा दो टोक जवाब देकर उनकी इस उम्मीद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के मामले में कुछ दो और कुछ लो के तरीके पर उनसे कोई मुसालहत करेंगे। मौजू और मजमून। इस पस मंजर को निगाह में रखकर देखा जाए तो मालूम होता है कि यह सूरा मजहबी रवादारी की तलकीन के लिए नाजिल नहीं हुई थी जैसा कि आजकल के बाद लोग ख्याल करते हैं, बल्कि इसलिए नाजिल हुई थी कि कुफार के दीन और उनकी पूजा पाठ और उनके माबूदों से कतई बरात, बेजारी और लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया जाए और उन्हें बता दिया जाए कि दीन कुफ्र और दीन इस्लाम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, उनके बाहम मिल जाने का सिरे से कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात अगरचे इब्तदान कुरैश के कुफार को मुखातब करके उनकी तजावीज मसालिहत के जवाब में कही गई थी, लेकिन ये उन्हीं तक महदूद नहीं है बल्कि इसे कुरान में दर्ज करके तमाम मुसलमानों को कयामत तक के लिए ये तालीम दे दी गई है कि दीन कुफर जहां जिस शक्ल में भी है उनको उससे कौल और अमल में बरात का इजहार करना चाहिए और बिला रू रियायत कह देना चाहिए कि दीन के मामले में वो काफिरों से किसी किस्म की मुदाहिनत या मुसालहत नहीं कर सकते। इसीलिए ये सूरा उस वक्त भी पढ़ी जाती रही जब वो लोग मर खप गए थे जिनकी बातों के जवाब में इसे नाजिल फरमाया गया था, और वो लोग भी मुसलमान होने के बाद इसे पढ़ते रहे जो इसके नुजूल के जमाने में काफिर व मुशरिक थे, और उनके गुजर जाने के सदियों बाद आज भी मुसलमान इसको पढ़ते हैं क्योंकि कुफर और काफरी से बेजारी और लाताल्लुकी ईमान का दायमी तकाजा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में इस सूरा की क्या अहमियत थी इसका अंदाजा ज़ैल की चंद अहादीस से किया जा सकता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हो की रिवायत है कि मैंने बारहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजर की नमाज से पहले और मगरिब की नमाज के बाद की दो रकतों में कुल या अय्युहल काफिरूना और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते देखा है। इस मजमून की मुतादिर रिवायात कुछ लफ्जी इख्तलाफात के साथ इमाम अहमद, तिरमिजी, नसाई, इबन माजा, इबन हिब्बान और इबन मर्दवे ने इबन उमर रजी अल्लाह अन्हो से नकल की हैं। हजरत खब्बाब रजी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि जब तुम सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटो तो कुल या अय्युहल काफिरूना पढ़ लिया करो, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद भी यह तरीका था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने के लिए लेटते तो ये सूरत पढ़ लिया करते थे। बज़ार, तबरानी, इबन मर्दवे। इबन अब्बास रजी अल्लाह अन्हो का बयान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया, मैं तुम्हें बताऊं वो कलिमा जो तुमको शिर्क से महफूज रखने वाला है वो ये है कि सोते वक्त कुल या अय्युहल काफिरूना पढ़ लिया करो। अबू याला, तबरानी। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज बिन जबल से फरमाया, सोते वक्त कुल या अय्युहल काफिरूना पढ़ लिया करो क्योंकि ये शिर्क से बरात है। बेहकी फिशाब। फर्दा बिन नौफल और अब्दुर्रहमान बिन नौफल दोनों का बयान है कि उनके वालिद नौफल बिन मुआवियतुल अशजई रजी अल्लाह अन्हो ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मुझे कोई ऐसी चीज बता दीजिए

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
1: Last time on Aakhri Mojza.
2: Hidayat sadak ke liye nahi mangi jati, aap mujhe bata dein sadak pe kaise pahunchu. Aapka maqsad kya hai? Bas sadak nahi, sadak se kahan jayenge? Bas aap sadak pe pahuncha dein, baki mujhe koi fikr nahi. Ye kaisi baat kar rahe ho? Kabhi bhi nahi hota ki aapki asal ghayat, aapka asal maqsad sadak ho. Aapka asal maqsad hota hai sadak kahan leke ja rahi hai. Lekin is surat mein हमें किस चीज, हमने क्या मांगा है? अगर मांगना होता, अगर हम कहें असल मकसद मेरा जन्नत है या अल्लाह से मुलाकात है, या अल्लाह मुझे वो रास्ता दिखा जो तुझ तक पहुंचा दे, या मुझे अपने तक पहुंचने का रास्ता बता दे, ये भी अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए। हिदायत किस चीज की है? हिदायत मुझे किसी तरह इस सड़क तक पहुंचा दे, बस। अजीब बात है।

0: इससे हमें हमें क्या सीखना है? हमें सीखना ये है कि इस्लाम में, इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में मुझे अंजाम से दिलचस्पी कम है, सफ़र से दिलचस्पी ज़्यादा है। मैं अगर दो कदम चला इस सफ़र में और मेरी मौत हो गई, कामयाब हो, अगर मैं हज़ार कदम चला और मौत आ गई, कामयाब हो, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं मैं कितना चला, बस इतना है कि मैं इस सड़क पर था और इस सड़क पर मैं चल रहा था। अब एक अगर ये बात समझ आ गई ना, तो मुझे किसी और से अपने आप को कंपेयर करने की दिलचस्पी नहीं रही, ये तो मुझसे आगे निकल गए, ये तो मुझसे पीछे हैं, इनको भी ना ना ना ना, ना हर एक का अपना पेस है, हर एक की अपनी स्पीड है, बहुत कुशादगी है इस रोड में भाई, आप किसी के पीछे नहीं फंसे हुए। कुछ लोग आपके साथ चल सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, वो करते हैं सपोर्ट आपको, आप एक दूसरे को जो रास्ते में जो ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं उनका आप सामना कर सकते हो। साइड पे और रोड्स हैं, उन पे बड़े प्यारे प्यारे साइंस लगे हुए, थोड़ा सा लेफ्ट टर्न ले लो, इधर भी आ जाओ थोड़ी देर, हमारे साथ भी थोड़ा टाइम गुजार लो, और आपका दोस्त आपको खींचेगा, नहीं नहीं नहीं चलते रहो चलते रहो चलते रहो, नहीं यार बहुत थक गए, एक एग्जिट तो ले लो यार, थोड़ा सा इस बस इस वीकेंड एग्जिट ले लें, उसके बाद तक उन बादी ही कौमन सालिहिन, उसके बाद अच्छे हो जाएंगे ना, चलते रहो साथ, जो साथ होगा ना वो आपको सपोर्ट करेगा, आपको सीधा चलाता चला जाएगा। ये बहुत खूबसूरत हिदायत है इहदिनस सिराते मुस्तकीम में, लेकिन इसमें सिर्फ बस एक चीज़ रह गई, और वो ये है कि अगर सिरात खुद ही से डिक्शनरी के अतबार से सीधी है तो फिर मुस्तकीम का क्या फ़ायदा? अगर इहदिनस सिराते कहा होता तो सीधा रास्ता वैली था, और मुस्तकीम से उसके सीधे होने में इजाफा नहीं हुआ। मुस्तकीम असल में कहा जाता है अरबी में इस्तकामा से, कामा से निकला है, जो क़ियाम से मुतालिफ है। क़ियाम किस चीज़ को कहते हैं? खड़े होने को। मुस्तकीम है जो वजीनु बिलकिस्तासिल मुस्तकीम, जो स्केल होता है ना, मीज़ान जिससे सौदा वगैरह वे किया जाता है, उसको खड़ा किया जाता है ना, सीधा खड़ा करना। मुस्तकीम है जो रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, मुस्तकीम ऊपर की तरफ होता है। तो ये सड़क सीधी भी है, कुशादा भी है, और जितना आप इस पर चलोगे आपकी ऊंचाई बढ़ रही है। ये भी एक इसमें इस्तेआरा है, इसमें एक मिसाल दी जा रही है, आप ऊंचाई की तरफ जा रहे हो। यरफ़ अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह ताला आप में से जिनका इल्म है और जो अहले ईमान हैं और जिनको इल्म दिया गया, उनके दरजात को ऊंचा करता रहेगा। आपके दर्जे जितना आप इस रस्ते पर चल रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप ऊंचे हो रहे हो। आप इस मिसाल को समझो, जितना मैं ऊंचा जा रहा हूं, पीछे क्या रह गया? दुनिया और दुनिया वाले लोग जो इस रस्ते पे चलना नहीं चाहते ना, उनसे मेरी दूरी होती चली जा रही है, क्योंकि मैं इस रस्ते पे चल रहा हूँ और वो लोग अभी ज़मीन पर हैं, और मैं एक तरह से मेरा उनसे फासला बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जब आप इस रास्ते पे चलते हो ना, तो आपकी कंपनी में थोड़ा फ़र्क आना शुरू हो जाता है। आपकी सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें जब भी आप मिलते हो, आपने बात करनी होती है फैशन के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, मूवीज़ के ऊपर, म्यूज़िक के ऊपर, कुछ 7-8 टॉपिक्स हैं उसी के अंतर्गत, या दोस्तों के बारे में, या फलाने के इंस्टाग्राम के बारे में, या फलाने के टिकटॉक के बारे में, या किसी की गीबत, या किसकी शादी, और किसकी मंगनी, और किसका कितनी अब रस्में कितनी है, 15-16 है रस्में, नहीं अब नंबर इंक्रीजिंग, मायू एंड पायू एंड शायू एंड टायू, आई डोंट नो, यही बातें होनी है बस जब आप इस रास्ते पर चलना शुरू करते हो। वो बातें तो हैं, क्योंकि उसमें दिलचस्पी कम हो जाती है आपकी, आपको एक फासला महसूस होता है कि इस कंपनी में कुछ दिल नहीं लग रहा, कोई या इसमें कुछ मुझे लग रहा है कि ये बातें मुझे इस रास्ते से खींच रही हैं, मुझे दोबारा नीचे लेके आ रही हैं। वलाकिन्नहु अखलदा इलल अर्दी, लेकिन वो ज़मीन की तरफ रह गया, ज़मीन की तरफ रह गया। वलौ शिअना लरफअनाहु बिहा, अगर हम चाहते तो हम उस इल्म की बुनियाद पर उसको ऊंचा कर देते। कुरान क्या चाह रहा है, हम क्या चाह रहे हैं अल्लाह ताला से? या अल्लाह ताला हमें ऐसी हिदायत दे जिस पे हम चलें तो हम क्या होते चले जाएं? ऊंचे। अच्छा, ऊंचाई का एक और फ़ायदा है, जितना इंसान ऊंचा जाता है उसके व्यू में क्या फ़र्क पड़ता है? ओहो, उसको बहुत आगे की नज़र आती है, उसको बहुत पीछे की नज़र आती है, उसको वो चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं जो औरों को नज़र नहीं आ रही, उसको नजर आना शुरू हो जाता है। वो उसकी उसका जो मंजर है ना, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू, वो ऐसा हो जाता है कि जो बाकी ऊपर नहीं पहुंचे हुए ना,
1: वो उसको समझ नहीं पा रहे। वो कहता है मुझे ये नजर आ रहा है, कहता है क्या पागलवानी बात कर रहे हो, यहाँ तो दरख्त है। नहीं, इस दरख्त के पीछे एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के पीछे एक दरिया है, उस दरिया के पीछे पहाड़ है। क्या यार, ये रेस्टोरेंट है बस, आपको वो बाकी आगे की चीज नजर ही नहीं आ रही, और फिर पीछे की चीज आपको नजर नहीं आ रही। जो इसका जिसका व्यू ऊंचा ना हो, उसको सिर्फ जो इमीडिएटली उसके सामने है, फौरी तौर पे उसके सामने है, उसको वो नजर आएगा। जो फौरी तौर पे कल उसके पीछे, वो उसको नजर आएगा। जो कुरान के जरिए से ऊंचा होता चला जाता है ना, उसको बहुत आगे क़यामत का दिन भी नजर आना शुरू हो जाता है, और बहुत पीछे आदम अलैहिस्सलाम नजर आने शुरू हो जाते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नजर आने शुरू हो जाते हैं, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आनी शुरू हो जाती है। मंजर बदल जाता है ना आपका, और फिर आपको पूरा एहसास होता है मैं हूं कहां पे। मैं आपको हाइकिंग की मिसाल देता हूं। हाइकिंग में अगर कोई किसी जंगल में पहाड़ में कहीं गुम जाए ना, तो क्या हिदायत दी जाती है, बता क्या इंस्ट्रक्शन होती है? आप हाई एलिवेशन पे जाओ, क्योंकि अगर आप हाई एलिवेशन पे जाओगे तो आपको व्यू मिलेगा, फिर आपको अंदाजा होगा आप कहां खड़े हो। जो जितना इस रास्ते पे चढ़ेगा, उतना उसको वाकई में अंदाजा होगा वो खड़ा कहां पर है, मैं हूं किस मोड़ पर अपनी जिंदगी में। एक दिन सिरात अल मुस्तकीम, ऐसे जैसे हम अल्लाह ताला से कह रहे हो कि या अल्लाह, मुझे ये भी नहीं पता मैं अपनी जिंदगी में कहां खड़ा हूं, मुझे खुद नहीं मालूम, आप बता दें, आप इस रास्ते से बता दें, आप मेरे व्यू को, मेरी नजर को बदल दें, मेरी बसीरत को बदल दें। असल में यही, जहां तक मैं, जितना मैं कुरान के बारे में सोचता हूं, मैं कुछ नतायज हैं जो दिल में खुब जाते हैं, और उसमें से एक बहुत बड़ा नतीजा मेरे अपने लिए पर्सनली ज़ाती तौर पे वो ये है कि कुरान के बुनियादी मकासद में से है कि जिस लेंस से मैं दुनिया को देखता हूँ ना, वो बदल जाती है। अपने आप को देखता हूँ, अपने ताल्लुकात को देखता हूँ, दुनिया को देखता हूँ, दूसरों को देखता हूँ, उस पर असर पड़ जाता है। जिस तरह ना आप अगर ऐनक सनग्लासेस पहनते हो, उसका लाल रंग का शेड हो तो सारी चीज़ें लाल नज़र आती हैं, ब्लू हो तो सारी ब्लू नज़र आती हैं, कुरान हो तो सारी चीज़ें कुरान के लेंस से नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, आपका एक व्यू बदल जाता है। और यही एक बुनियादी मकसद है कुरान का, कि अगर वो नज़र आना शुरू हो जाए तो सीधा रास्ता नज़र आना शुरू हो जाता है, और जो गलत रास्ते हैं वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं दूर से ही। इहदिनस सिरात अल मुस्तकीम। आई थिंक यू गाइस विल रियली एंजॉय दिस सेशन, ये सेशन स्पेशल। किसी को याद है इतनाब क्या होता है? मैंने कहा था इतनाब कोई चीज होती है, एक ही लफ्ज दो दफा कहना, जबकि दो दफा कहने की जरूरत बजाहिर ना थी, अगर आप ना कहते तो फिर भी बात वाज़ेह हो जाती, राइट? तो उसका एक खास मकसद होता है। जिस तरह हमने पहले कहा था, कुरान में एक भी लफ्ज एक्स्ट्रा नहीं है, कोई ज्यादती नहीं है, कोई कमी नहीं है। सिरात का लफ्ज भी दो दफा आया, अस्सिरात अल मुस्तकीम, और फिर दोबारा क्या, सिरात अल लदीना अनअमत अलैहिम। ये भी कहा जा सकता था अस्सिरात अल मुस्तकीम अल्लज़ी, और इसी के साथ जोड़ के सिरात अल मुस्तकीम अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, और मुख्तलिफ उसके असालीब मुमकिन थे। लेकिन दोबारा जिक्र करने का मकसद ये है कि इस सड़क के बारे में अल्लाह ताला ने हमें इस राह के बारे में दो चीज़ें समझने की हिदायत दी है। एक, कि हमें दूसरों के लिए इसमें जगह बनानी है, इसमें कुशादगी है। दूसरा, इस सड़क पर चलने के लिए अगर हमें कामयाब रहना है तो हमें अपने से पीछे देखना पड़ेगा। अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने पहले से ही नेमत की। नेमत को भी समझ लें, उर्दू में हम नेमत तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नेमा अरबी में नुमा से निकलता है। नुमा कहते हैं नरमी को, आसानी को, आराम को। जानवर जो आराम से चलते हैं ना, जैसे बिल्ली तेज़ चलती है, कुत्ता तेज़ चलता है, लेकिन गाय भैंस आराम आराम से चलते हैं, तो उन्हें अनाम कहा जाता है, क्योंकि वो आराम आराम से चलते हैं। नईम अरबी में कहते हैं कोई चीज़ जो हो वो बहुत नरम हो। इनाम से मुराद है अल्लाह ताला ने जिसके लिए आसानियाँ पैदा की, जिसके लिए चीज़ जो है वो सहूलत वाली बनाई। सिरात लदीना अनअमत अलैहिम में इस बात की तरफ इशारा है कि अगर सफ़र बहुत लंबा है और सीधा है तो इसका मतलब है और ऊपर की तरफ जा रहा है, और बाय द वे जितना सफ़र ऊपर की तरफ जाता है, जितनी रोड में एलिवेशन होती है, उतना मुश्किल होता है और थकाने वाला होता है। तो जितना इंसान थकेगा उतना इम्कान है कि वो फिर आधे रास्ते में छोड़ देगा या पीछे की तरफ गिर जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कहा, या हमने पूछा अल्लाह से, या अल्लाह कुछ लोगों के लिए आपने ये मुश्किल रास्ता भी आसान बना दिया। इस मुश्किल रास्ते में भी आपने आसानियां पैदा कर दी, सहूलतें पैदा कर दी। वो कौन लोग हैं उनके बारे में हमें बता दें। सिरात अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम, इसकी एक आसान मिसाल भी समझ लें। अगर आप यूनिवर्सिटी में हो और आप कोई डिग्री कर रहे हो और आपको नसीहत चाहिए कि मैं करियर में क्या करूं, आप किससे पूछोगे? क्या आप उससे पूछोगे जो फर्स्ट ईयर में है आपकी तरह, या आप उससे पूछोगे जो ग्रेजुएट हो चुका और अब इंडस्ट्री के अंदर है? किससे पूछोगे? ग्रेजुएट से पूछोगे ना, जो आपके साथ है वो आपकी तरह, वो भी गुमा हुआ है, आप भी कंफ्यूज, वो आपको एडवाइस तो बड़ी देगा लेकिन उसकी एडवाइस का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसके पास कोई तजुर्बा नहीं है, वो इस रास्ते से गुजर नहीं चुका। अल्लाह ताला ने यह नहीं कहा उन लोगों का रास्ता जिनको आप, जिन पर आप इनाम करते हैं, नहीं, उन लोगों का रास्ता जिन पर आप इनाम कर चुके। माजी इसलिए कि हाल में जो लोग अल्लाह ताला आज उन पर इनाम कर भी रहा हो, उनके कल की कोई जमानत नहीं है। हो सकता है वो थोड़ी सी प्रोग्रेस कर लें, लेकिन हो सकता है बाद में वो रास्ते से गिर जाए। हर इंसान गिर सकता है, किसी को कोई गारंटी नहीं है। और ये भी हमारे दिन का बहुत बड़ा हिस्सा है, हम किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये हिदायत याफ्ता है, इसको फॉलो करोगे तो जन्नत मिलेगी। हयात में से जो भी हयात है ना, उससे मैं आपसे फ़ायदा उठा सकता हूँ, आप मुझसे फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन मैं आपके बारे में कह सकता हूँ ना आप मेरे बारे में कह सकते हैं कि हिदायत तो इस शख्स के पास है, इस पे अल्लाह ने बड़ा इनाम किया, इसको फॉलो करोगे तो बस जिंदगी संवर जाएगी। क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम सब एक रस्ते पर चल रहे हैं, हम में से कोई भी किसी वक्त भी गिर सकता है, बल्कि गिरे ना भी जानबूझ के या बगैर, यानी जानबूझ के गलती से भी गलती कर सकता है इंसान। उसके फहम में गलती हो सकती है, उसके अमल में गलती हो सकती है, उसकी समझ में गलती हो सकती है, मुमकिन है कि नहीं? तो अगर हमें कोई ऐसा रोल मॉडल चाहिए जो गारंटी हो कि इसको फॉलो करना है तुम गलती नहीं होगी, तो वो ऐसे ही लोग हो सकते हैं जो पूरे रास्ते से गुजर के अंजाम तक पहुंच चुके, फिनिश लाइन तक पहुंच चुके। उसके अलावा किसी से मैं सपोर्ट तो ले सकता हूं, लेकिन उस पर मैं 100% डिपेंड नहीं कर सकता। भाई भी बड़ी प्यारी बात है, क्योंकि इस बाकी मजाहब में क्या हुआ बताए, हिंदुइज्म में पंडित है, कैथोलिसिज्म में पोप है, और ये जो शख्सियतें हस्तियां होती हैं क्या करते हैं लोग, उन पर 100% डिपेंड करते हैं। ये मुझे आखिरी रोड तक ले जाएगा, ये मुझे मेरी जिंदगी ये संवार देगा, मेरे गुनाह ये माफ़ करवा देगा, मेरी ख्वाहिशें ये पूरी करवा देगा। यानी जो हयात हैं उससे हम सीखें, लेकिन एक हद तक। अब देखें, सहाबा में से 10 हैं जिनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि 10 को जन्नत की जमानत दी गई, गारंटी कर दिया जन्नत मिलेगी 10 को। उनमें से एक उमर बिन खत्ताब हैं कि नहीं है? उमर बिन खत्ताब खुतबा दे रहे हैं और उनके कपड़े देख के एक औरत से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा यह आपने बैतुल माल से अपने हक से ज्यादा लिया है। उनका खुतबा इंटरप्ट कर दिया उसने, उनकी पकड़ की, उनको एक्सप्लेन करना पड़ा, नहीं नहीं ये ऐसी बात नहीं है, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया। ऐसा क्यों हुआ अगर बाकी वो जन्नत का उनको वादा कर दिया गया है और मैं उस क्राउड में बैठा होता तो मेरे जहन में तो कभी सवाल ना आता, अगर सवाल आता भी तो मैं कहता नहीं था तो जन्नती हैं, उनकी तो 100% पैरवी करनी है। लेकिन आप सहाबा की मिसाल देखें तो क्या देखते हैं, वो एक दूसरे से सवाल पूछते हैं कि नहीं, एक दूसरे की करेक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं, क्यों करते हैं? वो ये नहीं कहते ये तो बहुत पहुंचे हुए हैं, इनके बारे में पता है नबी ने क्या कहा है, इनको तो जन्नत मिलनी है, इनको नहीं, इनसे पूछोगे तुम? सिरात अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम में जिन लोगों की मिसाल बिल्कुल परफेक्ट है ना, जिसमें कोई खलल नहीं है, और जो पहुंच गए, ग्रेजुएट हो गए इस रस्ते से, वो लोग सब माजी में है, वो सब माजी में है, उनकी मिसाल हमने लेनी है, और उनमें और बाकियों में एक फ़र्क होना चाहिए। होता यह क्योंकि हमने असरात लिए और मजाहिब से, मुसलमानों ने सदियों में हमने और मजाहिब से असरात लिए, और उसमें से एक असर हमने ये भी लिया कि हमने ये अकीदत मंदी शुरू कर दी कि हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह ताला के ऐसे पहुँचे हुए बंदे हैं, ऐसे औलिया हैं अल्लाह ताला के, कि बस अगर उनके साथ मेरी सोबत हो जाए ना तो बस जन्नत ही जन्नत है। और यानी उनका एक ख़ास मकाम है, वो उस मकाम पर, वो हिदायत के उस रास्ते पर उनकी गारंटी हो चुकी है, अब ये गारंटीड शख्स हमारे मोहल्ले में रहता है, तो मैंने अगर इनका हाथ पकड़ के मैं ज़रा चूम लूँ और फिर इनके इनके दस्ते मुबारक से मैं पानी पी लूँ, या तो फिर मेरी भी मग़फ़िरत हो जाएगी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नहीं होता, ये और जगहों की बात कर रहा हूँ मैं। ये हज़ारों साल पुरानी गुमराही है, हमारे यहाँ नहीं होती, हम मुसलमान हैं माशाल्लाह। यही चीज़ इस्लाम तबाह व बर्बाद करने आया था। हमने अब लोग मेरे बारे में भी करते हैं, यार मेरे मेरे बच्चे के सर पे हाथ फेर दें, इसके लिए दुआ कर दें, इसके लिए कर दें, आप बस एक ये लफ्ज़ लिख दें मेरे लिए, मेरी मेरे लफ्ज़ से क्या हो जाए। जैसे आप अल्लाह के बंदे हो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, जैसे आपकी कोई गारंटी नहीं, मेरी कोई गारंटी नहीं, ये माइक मेरे ऊपर लगा हुआ है, इससे मेरी कोई मेरा कोई रुतबा नहीं बढ़ जाता। अल्लाह को मालूम है किसका मकाम ऊंचा है, किसका मकाम नीचे है, ये तो मेरे रब को मालूम है, मुझे इसका कोई इल्म नहीं, आपको इसका कोई इल्म नहीं। हमारा रवैया क्या होना चाहिए? फिर ये रवैया मैंने जब देखा ना, मेरे कुछ दोस्त थे जो हम मैं जब इस्लाम सीख रहा था और मैं मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसेस से गुजर रहा था, तो मेरे कुछ दोस्त थे उनके कुछ और इन्फ्लुएंसेस थे, तो एक साहब से वो सीख रहे थे, उनके वो बहुत ज़्यादा यानी पैरोकारी में वो लगे हुए थे। तो एक दफ़ा वो एक कॉन्फ्रेंस में आए, वो साहब बहुत पहुँचे हुए अल्लाह ताला के उलिया में से, तो वो चल रहे थे, उनके पीछे पीछे उनके तालिब इल्म ऐसे ऐसे चल रहे थे आधे रुकू में। मैं कहा ये कौन सा इस्लाम है, ये इस्लाम तो मैंने कुरान में नहीं सीखा, ये तो मुझे सीरत में नज़र नहीं आ रहा। सीरत में तो मुझे ये मिल रहा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे हैं सहाबा के साथ, और कोई गैर अंदर आता है, कोई अजनबी अंदर आता है, और वो अबू बकर से बात करनी शुरू कर देता है, या रसूल अल्लाह, तो अबू बकर कहते हैं नहीं नहीं नहीं वो है, यानी उनको पता नहीं चलता था कि रसूल कौन से हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर बिन खत्ताब जिनको जन्नत की जमानत दी गई है, दरख्त के नीचे गदा बांध के सो रहे हैं, कोई रैंक नहीं है, कोई ख़ास कपड़ा नहीं है, कोई ख़ास लिबास नहीं है कि वो एक दफ़ा वो आ गए तो फिर नूर आ गया। एक नौजवान मुझे कल मिला था रेस्टोरेंट में, कहता आपकी शक्ल पे बहुत नूर है, मैंने कहा नहीं ये क्रीम लगाई है मैंने कोई नूर नहीं है ये जो हमने बनाया हुआ है ना, कि कुछ लोग हैं जिन पे अल्लाह का बड़ा ख़ास इनाम है, बहुत ओ हो ये ओ हो ना, ये सिरात लदीना अनअमत अलैहिम इसका तोड़ है। जिन शख्सियात से हमें इम्प्रेस होना है ना, वो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, अस्हाबुल कहफ, ये वो लोग हैं जिनके बारे, ये हैं अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, इनके बारे में सीखो, इनसे इंस्पिरेशन लो। मैं ये नहीं कहता कि हमें अपने बड़ों की और अपने बुजुर्गों की और अपने उलमा की इज्जत नहीं करनी चाहिए, मैं कहता हूँ बिल्कुल इज्जत करनी चाहिए, उन्हें पोप नहीं बना देना चाहिए, वो एक और मज़हब है, वो इस्लाम नहीं है, वो एक और दीन है। और जब मुझे ये बात समझ आई, मेरे कुछ हलकात में, मैं जब यंगर नौजवान था तो कुछ हलकात में कोई बड़े बड़े आलिम आते थे न्यूयॉर्क में ना, मुख्तलिफ जगहों से, तो लोग उनसे बड़े मुअत्तबाना अंदाज में, शेख साहब एक सवाल है, एक सवाल अर्ज कर दूँ, बस एक सवाल अर्ज कर दूँ, ये क्या हो रहा है? वो सवाल उसका वो जवाब देते तो मेरे जहन में एक फॉलो अप क्वेश्चन आता, मुझे उनका जवाब समझ नहीं आया, उनका जवाब मेरे नज़दीक कामिल नहीं था या कन्विंसिंग नहीं था, तो मैं आगे से सवाल पूछ लूँ, आपने ये बात की लेकिन आयत पे तो कुछ और बात हो रही है, तो आप इसको कैसे रिकनसाइल करते हैं? इतनी सी बात। और जो उनके सारे फैन बैठे हुए थे ना, वो क्या करते हैं पता है? पता नहीं है कौन है। जैसे एक दफ़ा हज़रत ने जवाब दे दिया तो किसी की क्या मजाल आगे से पूछने की। मैं तो समझा था मैं एक ऐसे ऐसे दीन को फॉलो कर रहा हूँ जिस दीन में फरिश्ते, जब फरिश्तों को बात समझ नहीं आई कि आदम को क्यों बनाया, वो तो खून बहाएगा, उन्होंने बेटोक पूछ लिया अल्लाह ताला से, आप क्या ज़मीन में ऐसी मखलूक डालेंगे जो फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा? पूछा भी किससे? अल्लाह से। और अल्लाह ने नहीं कहा तुम किससे पूछ रहे हो, तुम्हारी ये मजाल? ऐसा कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि जिन लोगों का रास्ता बगैर पूछे, बगैर क्रिटिसाइज किए फॉलो करना है और आंखें बंद करके फॉलो करना है, वो कहाँ है? वो माजी में है, वो माजी में साफ़ लदीना आराम था आने, वो पीछे हैं, वो अभी नहीं है। अभी हम एक दूसरे से सीख सकते हैं, लेकिन हम में से कोई रास्ते की इंतहा तक नहीं पहुंचा, तो हम एक दूसरे से, हमें आपके फायदे के लिए, आप मेरे फायदे के लिए। और ये जब मेरे अंदर ये रवैया आ गया ना, इसको कुछ लोग बदतमीजी कहते हैं, मेरे नज़दीक ये इल्म का रास्ता है, इल्म का सफ़र है और हिदायत का सफ़र। अल्लाह ताला ने मेरी पॉपुलैरिटी की वजह से मेरे लिए बड़े अजीब अजीब दरवाजे खोले और दुनिया के बहुत सारे उलमा जो हैं उनसे मेरी एक्सेस हुई, उनसे बात करने का मौका हुआ। तो मैं बात करने से पहले ही मैं कह देता हूँ, सर मैं ये रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा ना, ये वीडियो पे डालना चाह रहा हूँ, मैं अपने फहम के लिए मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, तो जो जहन में सवाल आएगा मैं पूछूंगा, बदतमीजी लगेगी शायद आपको, लेकिन मैं फिर भी करूंगा सवाल, तुमने कहा यही पसंद है मुझे। और फिर मैं करता हूँ वो बात, कहते हैं फिर मैं कहता हूँ आपकी दिल में कोई तो क्यों नहीं बनती, इसलिए नहीं बनती, फिर हम डिबेट करते हैं, फिर उनको मेरी बात अच्छी लगती है, कोई बात मेरी बुरी लगती है, लेकिन हम डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करोगे ना तो आपकी आपके जहन में, आपकी सोच में, आपके फहम में इजाफा होगा। अगर आप यानी लिहाज रखते हुए सवाल ही ना पूछो, जहन में सवाल रहे बेअदबी होती है, तो आपकी असल वफादारी इल्म से नहीं है, हिदायत से नहीं है, आपकी असल वफादारी लिहाज से है किसी के। मुझे हिदायत के रास्ते में मुझे किसी और चीज़ का लिहाज नहीं है, मुझे बस हक का लिहाज है, बस मुझे हक चाहिए। और मैं वो ये भी ऐन मुमकिन और बहुत दफ़ा हुआ है कि मैं कोई चीज़ सीखा, मैंने कोई चीज़ सीखी, मुझे लगा कि ये सही है, दो साल बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये बात सही नहीं है, और ऐन मुमकिन है कि सही नहीं है। और हो सकता है कोई चीज़ अभी मैं बिल्कुल कन्विंस हूँ कि ये सही है, और बाद में कोई दलाइल सामने आए और कोई बात सामने आए और पता चले कि ये बात सही नहीं थी, मुमकिन है, क्योंकि इंसान से गलती होती है, इंसान सीख रहा है, और सीखने के रास्ते में गलत नतीजे पर पहुंचना भी उसका हिस्सा है, उस सफ़र का हिस्सा है। लेकिन इन अल्फाज में सिरात लदीना अनअमत अलैहिम बहुत बड़ी, बहुत गहरी हकीकत मुजमर है, और ये अल्लाह ताला से जो हमारा ताल्लुक है उसको ख़राब होने से बचाया गया है इन्हीं अल्फाज के ज़रिए से, सिरात लदीना अनअमत अलैहिम। फिर दूसरी बात यह भी बता दी कि जो लोग इस सफ़र के इंतहा तक पहुँचे ना, वो इसलिए नहीं कि वो बहुत पहुँचे हुए लोग थे, कोशिश उनकी थी, लेकिन आसानी किसने बनाई, तौफीक अल्लाह ने, अनअमत अलैहिम, ये नहीं कहा सिरात अस्सालिहीन, सिरात अल-अंबिया, सिरात अश-शुहदा, वो अंबिया सालिहीन कितनी अजीम शख्सियतें हैं, लेकिन हाईलाइट क्या किया गया यहाँ पे, हाईलाइट किया गया कि अल्लाह ताला ने उनके लिए क्या किया, आसानी बनाई। अगर सोचो जरा, अगर यहाँ कहा होता, क्योंकि एक और मकाम पर कुरान में فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا, इसकी तफसीर की गई है, किन पर इनाम किया गया, नबी सिद्दीक यानी सिद्दीक जिन्होंने अम्बिया की बात को सच माना, शुहदा आप जानते हो शुहदा कौन है, सालिहीन अच्छे लोग, चार ग्रुप बताए। अगर ये यहाँ लिखा होता, कुरान ने ये बात कही होती यहाँ पर, सिरात النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, अगर इस तरह बात की होती तो असल में उनके मकाम की बात हो रही होती, अल्लाह ताला को जो उन पर इनाम है उसकी बात नहीं हो रही होती। वो तो अंबिया थे, वो तो शुहदा थे, वो तो सिद्दीकीन थे, वो तो सालिहीन थे, हम तो वो नहीं है। यहाँ कहा उनका रास्ता बताएं जिनके लिए आपने आसानियाँ की। अब जिस तरह इस तरह से कहा तो क्या बात सामने आ गई, मेरे लिए भी आसानी कर सकता है, उनके लिए की तो मेरे लिए भी कर सकते हैं, ऐसा रास्ता बताएं कि जब मैं इस रास्ते पर चलूँ, एक दो कदम चलूँ, तो आगे आसानी कहां से आएगी, अल्लाह की तरफ से। आउन का मतलब क्या था, आउन का मतलब क्या था, पहले कोशिश फिर मदद, यहां पहले कहा रास्ता बता दे, रास्ते पे चलूं तो आसानी कहां से आएगी, अल्लाह से आएगी। वही बात दोबारा कही जा रही है, सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम, ठीक है। अच्छा,
2: सब्सक्राइब नाउ टू द बेगिना यूट्यूब चैनल टू वॉच द रेस्ट ऑफ दिस सीरीज एंड मोर ग्रेट कंटेंट फ्रॉम उस्ताद नुमान अली खान। Coming up next time on Akhri Mojza.
1: तो तवक्को ये थी, हमें सीधा रास्ता दिखाएं, उसकी हिदायत दें, उनका रास्ता जिनको आप पहले भी हिदायत दे चुके, हिदायत ही तो मांगी थी, तो हिदायत याफ्ता लोगों के बारे में बात करनी चाहिए थी, लेकिन हिदायत के लफ्ज़ इस्तेमाल करने के बजाय क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इनाम, यानी एक तब्दीली लाई गई है कलाम के अंदर, इसको भी नोट करने की ज़रूरत है। सिरातल लदीना हदैताहुम के बजाय सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम, इससे क्या फर्क पड़ता है।
3: दिस प्रोग्राम विल कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक, कंटिन्यू लिसनिंग टू इंस्पायर एफएम, इंस्पायर एफएम, इंस्पायर 105.1 एफएम।
4: Did you know? Flamingos bend their legs at the ankle, not the knee.
5: Hair loss, acne, scarring, eczema, joint pain, keloids, anti-aging. Whatever the concern, your treatment should start with medical expertise. Aesthetic Central Luton, a medical clinic specializing in regenerative medicine, advanced aesthetics, and doctor-led procedures from PRP, PRF, GFC, and exosomes to skin pen microneedling, peptide facials, chemical peels, laser hair removal, joint repair, blood tests. 8 years of success and over 200 five-star Google reviews. A beautiful new location with free on-site parking. Your private medical care has never been easier to access. Visit us at Aesthetic Central.
6: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
7: Once Imam Bukhari was in the masjid and waited for everyone to leave so that he could talk to Mash'ar, who was a blind student. Once everyone left, Imam Bukhari began crying and begged the blind student to forgive him. The student was shocked and asked, "What for?" So Imam Bukhari answered, "Once I was narrating hadith to my students. You were enjoying that hadith so much that you were in the state of dancing and removing your head and hands. All the other students started looking at you. I also looked at you and smiled at your actions. Since you cannot see, I fear that this may be a backbiting that I have done against you." The man replied, "Is that all? Of course I forgive you."
8: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years' experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
9: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617 617. Terms and conditions apply.
10: Head over to inspirefm.org to check out our new website. Miss the show or want to listen back to an old one? Want to know about upcoming schedules or maybe keep up to date with events going on? Don't worry, it can be found right here on www.inspirefm.org. As well as that, have a question, query or comment, find the contact details right here and become part of your community radio station. For the community, by the community.

जहन में बात होती है, अगर ना सीखो तो बच जाऊंगा। बालिंग, नहीं नहीं नहीं मुझे नहीं बताओ, मुझे नहीं बताओ। और हमारे यहाँ तो अब बालिन का एक कल्चर बन चुका है। अब तो ये कह दिया, आप कुरान सीख ही नहीं सकते, आपको आलिम हो क्या, आप सीखोगे कुरान? कुरान उलमा के लिए होता है, खुद सीखोगे तो क्या होगा, भटक जाओगे। फातिहा नहीं पढ़ी, वाकई नहीं पढ़ी। जो कुरान जिन्नात सुन के गुजर रहे थे, सुन के मुसलमान हो गए, वो तुम नहीं सुन सकते, तुम गुमराह हो जाओगे। जो कुरान ईसाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किरात सुन के मुसलमान हो गए, जो सारी जिंदगी मुशरिक उमर बिन खत्ताब थे, कुरान को काबे के नजदीक सुन के वो दिल हिल गया उनका, तुम नहीं सुन, तुम गुमराह हो जाओगे। उनके लिए हिदायत थी, वो तुम्हारे लिए थोड़ी, वो तो ग्रेजुएट थे ना किसी आलमी इंस्टीट्यूट से। क्या नॉनसेंस है ये कैसे तमाम इंसानियत के लिए पैगाम हो सकता है अगर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते? कुरान का तदब्बुर, कुरान का सही फहम, उसके लिए इल्मी गौता लगाना पड़ेगा, उसमें कोई शक नहीं। इसके लिए उलमा की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये कहना कि कुरान को कोई पढ़ ही नहीं सकता किसी आलिम बने बगैर, ज्यादती है, कुरान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। पैगाम तमाम इंसानियत के लिए आया था, किसी मदरसे के ग्रेजुएट्स के लिए नहीं आया था। उन ग्रेजुएट्स का मकसद क्या था? ग्रेजुएट होके बाकी लोगों के लिए कुरान को आसान बनाना, एक्सेसिबल बनाना, एक्सक्लूसिव नहीं बनाना। यू नो, तो यहाँ गैर अलमग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन में दोनों तरफ इल्म और अमर, और अमर और इल्म दोनों की तरफ इशारा हो गया। ओके, नाउ एक और बात, फेल और इसम वाली बात, आखिरी दफ़ा। फेल हमेशा के लिए होता है कि कभी कभी होता है? और इसम कब होता है? हाँ, जिन पर इनाम किया, उनका रास्ता जिन पर इनाम किया, फेल है या इसम है? और किस सीगे में है? माजी में, जिन पर इनाम किया। लेकिन गजब के मुस्तहिक, गजब के मुस्तहिक और भटके हुए क्या है? इसम है, दोनों दोनों इसम है। इसम के बारे में हमने क्या सीखा था? ना उसका माजी है, ना हाल है, ना मुस्तकबिल है। यानी ये खतरा ऐसे लोग हर दौर में होंगे। अनाम तालीम सिर्फ माजी में है, लेकिन अलमखदूब आलिम माजी में भी थे, हाल में भी हैं और मुस्तकबिल में भी होंगे। इसी तरह अब्बालीन माजी में भी थे, हाल में भी हैं और मुस्तकबिल में भी होंगे। यह हमेशा का मसला है, इसीलिए पूछा गया है। इसीलिए हम मांग रहे, अल्लाह ये इस मेरे अंदर दो खतरात हैं, या मैं इस गलत रास्ते पे निकल जाऊंगा या मैं इस गलत रास्ते पे निकल जाऊंगा। गैर मखदूबी आलिम और अब्बालीन, ओके। ये भी अजीब बात की अल्लाह ताला ने, गुस्सा किसी और की तरफ से हो रहा है, लेकिन गुमराही में ये नहीं कहा जो गुमराह कर दिए गए, कहा जो गुमराह हुए। जब गुमराह हुए, इसका मतलब पता है क्या है? वो खुद जिम्मेदार हैं, आप खुद जिम्मेदार। आप ये नहीं कह सकते मुझे किसी ने गुमराह कर दिया था इसलिए मैं गुमराह हो गया। वो होता मुदल्लीन, और लफ्ज अरबी का बाल्लीन है, आप खुद गुमराह हुए हो, आपकी खुद जिम्मेदारी है। आपको अब इल्म की एक्सेस थी, आपने खुद ही चॉइस की, आपने खुद ही इख्तियार किया कि आपने नहीं सीखना। ओके ओके, एक्चुअली एक छोटी सी बात मैं कर दूं, फिर ये तवासुन की तरफ आएंगे। बहुत खूबसूरत बात है, अरबी जबान में इस तरह हम कहते हैं ना, ना मैंने खाना खाना है, ना मैंने पानी पीना है, ना और ना, ना तो मैं ये करूँगा, ना मैं वो करूँगा, तो हम ना और ना का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में हम कहते हैं नाइदर विल आई ड्रिंक नोर विल आई ईट, नाइदर नोर, राइट, नाइदर नोर। और इंग्लिश उर्दू में कहते हैं ना और ना, अरबी में कहते हैं ला वला, ला हाजा वला हाजा, या कहते हैं मा वला, मा हाजा वला हाजा, या कहते हैं लैसा वला, लैसा हाजा वला हाजा, या कहते हैं गैर व औ, गैर हाजा औ हाजा। मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, ला वला, मा वला, लैसा वला, गैर व औ। फातिहा में इनमें से कोई भी नहीं है। क्या है? गैर मखदूबी अलैहिम व गैर वला,

0: خير المولج وخير المخرج. بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا.
1: Why do Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582-725000.
2: Gems and jewels, wise sayings, interesting events, and moral lessons from Islamic history. And verily, a day with your Lord is as 1,000 years of what you reckon.
3: And he says,
2: that will be a day of decision. We have brought you and the men of old together.
4: Lee Grave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and megaflow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
5: Did you know that over 361,000 children die every year due to lack of clean water? Clean water is not a luxury, but a basic human right. UKIM is working to end their suffering. By providing clean and safe water, make a difference. Provide clean and safe water with UKIM. For donations, call now or visit ukim.org.
6: Join us every Thursday at 6 p.m. for expert advice on common health conditions and well-being, hosted by Fahad Matin,
7: Suleiman Rafiq,
8: Leo Nizar,
9: and Dr. Amna Hawash. Our dedicated team brings you a live, interactive experience every Thursday.
8: Tune in on 105.1 FM.
9: You can also find us on Facebook Live and our YouTube channels.
6: Health and Fitness Show, every Thursday at 6 p.m. Only on Spire FM, shaping the healthier community.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
11: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूं आजाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आजाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आजाद है तेरे ओनली ऑन इंस्पायर एफएम
12: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe ji aap bol ke lab azad hain tere.
13: Insano ke baare mein 100% nahi jaan sakta. To aap agar achhe aadmi hai na, ya darmiyane se insaan hai aap, na achhe hai na bure hai, darmiyane se aadmi hai, aur aap एक सोचते हैं कि एक आदमी ये नॉर्मल चीज़ है इससे नीचे कोई इंसान नहीं जाएगा ठीक है इससे नीचे ये इंसान नहीं जा सकता होगा या ये लेडी इससे नीचे नहीं जाएंगी वरना वो नीच हो जाएगा क्योंकि आप वो चीज़ नहीं सोच सकते तो इसलिए आप वो लोगों के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बाय द वे वो लोग जब आप उनसे डील करेंगे तो अगर वो उनसे बहुत नीचे हैं बहुत लोएस्ट मेंटल कैलिबर के हैं या बहुत घटिया नेचर के इंसान हैं या वो बहुत मैनिपुलेटिव हैं तो ये अगर आपके नेचर में मैनिपुलेटिव नहीं है तो आप ये नहीं फिगर आउट कर सकते वो जब आपके साथ करेंगे तो पता चलेगा इंसान जो है ना उसको एक बात याद रखनी है रब ने जब भी आपको कोई एबिलिटी देता है तो उसको अपने बैलेंस में रखना होता है तो इंसान को कभी भी किसी से बदगुमान नहीं होना चाहिए ठीक है ये सोचना किसी को देखते ही कि ये मेरे साथ बुरा करेगा, ये नहीं करना किसी इंसान ने भी, ये अलाउड नहीं है कानून में। दूसरी तरफ खुशगुमान होना, इतना खुशगुमान होना कि ये आदमी मेरी जिंदगी बदल के रख देगा, ये बेवकूफ़ी भी नहीं करनी होती। तो गुमान आपने बेसिकली कोशिश ये करना है कि गुमान आप रखें रियलिस्टिक, ठीक, इन दोनों के बीच में रखें। और जब आप बीच में गुमान रखेंगे, ना बहुत ज़्यादा मतलब एग्जैजरेट करें कि बुरा आदमी है, ना ये कहें कि बहुत अच्छा है, बीच में जब आप रखेंगे और उसके बाद क्या होगा, ये आप अच्छे तरीके से इनके साथ डील कर लेंगे, और उसके बाद वो लोग जो कहते हैं या जो उनके एक्शंस होते हैं वो डिसाइड करेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली कि वो घटिया हैं या अच्छे हैं। तो आप जैसे जैसे वो अच्छे होते जाएंगे आप उनके साथ वैसे वैसे डील करते जाएंगे, जैसे जैसे वो नीचे की तरफ घटिया होते जाएंगे आप वैसे वैसे उनके साथ सख्ती करते जाएंगे। ये तरीका है लोगों के साथ डील करने का जो मैं अप्लाई करता हूँ पिछले कोई 4-5 साल से जो मैंने डिवाइस किया हुआ है। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते, ना किसी को इस तरह आदमी नीच सोचता है, ना किसी से आपका कोई नुकसान इस तरह आप सोचते हैं, ना आप किसी से फ़ायदा चाहते हैं, आप सिर्फ इंसानों से इंसानों की तरह डील करना चाहते हैं भलाई के तौर पे। उसके बाद जब भलाई होती है तो इट ट्रेवल्स बोथ वेज, दोनों का उसमें फ़ायदा हो जाता है। तो ये तरीका है चीज़ को सामने रखने का, इंसानों से डील करने का। आई होप इससे आसानी हुई समझने में।
7: बिल्कुल आसान, मतलब यानी आप बैलेंस से शुरू करते हैं और फिर वो खुद ही सॉर्ट आउट हो जाता है।
13: आप चीनी जब डालते हैं ना किसी चीज में, आपको नहीं पता ये चीनी किसके पास है, नमक कभी कभी बड़े तेज भी होते हैं, तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि खोल के हाथ बेवकूफ़ों की तरह नमक डाल देना या बिल्कुल भी ना डालना, अच्छा खासा खाने के बाद कड़वा हो जाता है खाना, तो आपने थोड़ा सा नमक पहले डालें उसके बाद उसको चखें, फिर उसके बाद खाना वाना जब आप आधे में पहुंचते आगे तो थोड़ा सा और डाल के चेक कर लें अगर कम लग रहा है आपको। तो ऐसी कोई भी टेक्निकल चीज़ जो कि सबका सब बदल सकती है उसको देखकर सोचकर साथ साथ आप डालेंगे तो चांसेस ये हैं कि आप खाना कभी भी बहुत बुरा नहीं कर पाएंगे, तो ज़िंदगी भी आप कभी भी बहुत बुरी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इंसान को रब ने बैलेंस में रखने का और कफायत शहरी से ले के म्याना रवि के बारे में ये दरमियाना रास्ता इसलिए रब ने बताया है कि इसमें आपकी छूट बहुत होती है एक, और दूसरा आपका नुकसान बैलेंस में रहेगा, और दूसरा आपका जो फ़ायदा है वो भी बैलेंस में रहेगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ट्रस्ट डेवलप होगा, जब इंटेग्रिटी टेस्टेड हो जाएंगी चीज़ें, तो फिर आप उन लोगों के साथ और बेहतर डील कर लें या बड़ी डील कर सकते हैं। लेकिन जो बंदा छोटी डील में, ये मेरा पक्का असूल है, जो बंदा $200-400 में बेईमान है उसके साथ $4,000-$10,000 या $1,000-$2,00,000 का सौदा करने वाला बंदा बेवकूफ़ होता है, वो हमेशा नुकसान होगा क्योंकि नेचर नहीं बदलती है। जिसको पैसे से प्यार होता है और जो पैसा अपने पास रखना चाहता है शेयर नहीं करना चाहता, उस बंदे के साथ आप कभी भी कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आप मारे जाएंगे, चाहे वो माँ बाप ही क्यों ना हो, बहन भाई क्यों ना हो। अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, फिर गिला शिकवा रोना रोना ना खेला करें। और अजमत का मीनार अगर आपने बनना है तो फिर और बात है, जो कि बहुत तकलीफ़ में रहता है इंसान, अगर अजमत का मीनार है तो ठीक है। मीनार मीनार के तौर पे सीमेंट से, पत्थर से, ईंट से बना हुआ होना चाहिए जो कि किसी की यादगार के तौर पे इस्तेमाल होता है। इंसान में, फरिश्तों में, इंसान में और जिनों में, और इंसान में और मीनार में बहुत बड़ा फ़र्क है। इंसान को इंसान का बच्चा बन के इंसानों की तरह रहना चाहिए। इंसान जिसको सर्दी लगती है, जिसको गर्मी लगती है, जिसको तकलीफ़ होती है, जो बीमार होता है, जो कभी कमज़ोर हो जाता है, जो कभी नाराज़ हो जाता है, कभी खुश रहता है, लेकिन इन तमाम चीज़ों को अगर इंसान इंसान है तो वो बैलेंस में रखने की कोशिश करता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता करके अपने पे काम करके, इससे रिजल्ट बेहतर होते जाएंगे। कितना अच्छा क्लिप रिकॉर्ड कराया आपने, जो दाढ़ी वाले बाबे ने गलत दिन रिकॉर्ड किया और ये कोई नहीं देख पाएगा लेकिन जो लोग रेडियो सुनते हैं वो सुनते जरूर रहेंगे और सुन पाएंगे
7: इंशाल्लाह। जब दो लोगों के दरमियान आपके ख्याल
13: सारे अच्छे पॉइंट्स आपने आज ही पूछने हैं
7: क्या चीज
13: सारे अच्छे पॉइंट्स आपने आज ही पूछने हैं जो मैं रिकॉर्ड नहीं करा पा रहा
7: कोई बात नहीं अजादला फिर पूछ लेंगे।
13: ये आप नहीं पूछेंगे फिर, मुझे पता है ना, क्योंकि फौरन नहीं पूछती आप, और जब आप पूछती हैं तो पैकेट उसी वक्त आता है। तो जब पैकेट आता है, गरम गरम पैकेट, गरम गरम डबल रोटी खाई है आपने कभी?
7: That's my favorite. Oh my God, इसकी स्मेल, उसका मजा ही अलग होता है।
13: अगर उसके वीट की जो असल स्मेल है ना, उसको आप हाइब्रिडाइज ना करें, उसको आप ब्लीच ना करें, उसके साथ इंसानी कमीनापन ना करें अगर आप, तो वो कोई भी कमीनापन आप ना करें फूड के साथ, तो जो असल तंदूर की रोटी है ना, जिसके साथ वो जो जिसका आप फाइबर भी ना निकालें, ठीक है, और जिसमें हल्का सा खमीर भी हो, ठीक, जिसको सावड्डो आजकल आप कहते हैं, हल्का सा खांजी। देखिए इंसान कितना बदबخت, जब खांजी बचपन में खमीरी रोटी खाते थे हम कहते थे खट्टी है, खुशबू आ रही है, नहीं खाना हमको, आज हम ढूंढ ढूंढ के महंगी महंगी सावड्डोज खा रहे हैं वही चीज़ आप वापस चले जाते हैं। इसीलिए मैं खांजी की, इसीलिए मैं हिस्ट्री की, इसीलिए मैं रब की चीज़ें वक्त से पहले जाकर फिगर आउट करके अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि विजडम एक्चुअली इन्हीं चीज़ों में से है और इन्हीं चीज़ों की तरफ वापस, वही हल्दी वापस आ गई है, ठीक है जी, वही जीरा, वही सौंफ, वही चीज़ें जो बचपन में काली जीरी जिससे हम भागते थे, वही हैंग, ना लगे हैंग और ना फटकड़ी और रंग भी चौखा है, वही फटकड़ी अलम के बहुत ज़बरदस्त तौर पे यूज़ हो सकती है, आपको पता है ना फटकड़ी अलम जो है, इसको बहुत अच्छे तरीके से हम एंटी प्रेस्पेरेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, स्किन के लिए इसको बहुत अच्छे तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं और नेचुरल है, अरब यूज़ करते हैं इसको
7: ज्यादा, बहुत लोग हज जब जाते हैं हज में बहुत यूज करते हैं या वहाँ पे, क्योंकि वो खुशबू नहीं लगाते तो ये फटकड़ी यूज करते हैं।
13: बहुत इम्पोर्टेंट है, वो करना चाहिए।
7: तो असादला, आपके ख्याल से दो लोगों के दरमियान मोहब्बत बैलेंस्ड होती है या नहीं, हमेशा एक बंदा ज्यादा दे रहा होता है?
13: हमेशा एक बंदा ज्यादा दे रहा होता है। अच्छा। इंसान जो होता है, इसके बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मैं अगर आपको एक्सप्लेन करने लगूंगा घंटे में बताऊंगा। कभी भी रेसिप्रोकेशन हो रही होती है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रही होती है, लेकिन अगर पूरी जिंदगी को मैं अपने सामने रख के देखूं और लोगों के जितने हजारों लोगों से मैं मिला हूं, इससे साबित किया जा सकता है कि एक आदमी हमेशा ज्यादा कर रहा होता है और दूसरा कम, लेकिन रेसिप्रोकेशन चल रही होती है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा होता है। इसको रोकें अगर आप ना, अगर देने वाला किसी को मिल जाए ना, कोई गिवर मिल जाए, तो अगला बंदा अगर टेकर भी है तो वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अगर सही रखेगा तो सारी जिंदगी भी टेक करता रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंसानों को ना बहुत लेवरेज देना होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है चीज़ों के लिए कि इंसान इंसान होते हैं, वो किसी प्री जेनेटिक डिस्पोजिशन से पैदा हुए होते हैं, उनके एक बचपन में जो उनके साथ हुआ था उसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी बनती है, उनके एम्बिशंस को देख के, उनकी ज़िंदगी को सामने रख के। अब वो शादियां जब आपस में करते हैं, पार्टनर्स हैं अगर आपस में, अब वो उन्होंने मोहब्बत की शादी की है, अरेंज मैरिज है, किस सिचुएशन से, किस एनवायरनमेंट से वो निकल के आए, हर आदमी शादी को चलाने की कोशिश कर रहा होता है। इस चलाने के अंदर आप परफेक्शन ढूंढने के बजाय, अगर कोई गिवर है तो आप कमीनापन ना करें उसके साथ, अगर कोई टेकर है तो दूसरा गिवर भी उसको, अगर आप 100% भी नहीं देंगे लेकिन जो मिला है उसको ही रिसाइकल करते रहेंगे तो आपका काम चल जाएगा, बड़े आराम से ज़िंदगी गुजर जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स देना शुरू कर दें, 2%, वो 2% जो गिवर को चाहिए, गिवर लेडी है या जेंटलमैन है, अगर उसको चाहिए वो 2% आप दे दें, आपको 200% मिलना शुरू हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस शुक्रगुजारी का है। मर्दों को पर्पस चाहिए होता है, उनको मसला दे दें और उसका हल उनसे लेना होता है, उन्होंने उसको हल करना होता है, वरना वो अपने आप को मर्द महसूस नहीं करते। औरत का मसला क्या है, वो सिर्फ चाहती है कि भाई मेरी सिर्फ मसला सुन लें। अबे मसला सुनना नहीं होता सिर्फ, एक्चुअल में वो भी ये चाहती है कि मसले का हल निकल आए, लेकिन वो चाहती है कि सिर्फ सुन लिया जाए। सुन क्यों लिया जाए, आप बराबर के हिस्सेदार हैं एक रिश्ते में, आपको एक मसला, एक तकलीफ है, उसको सुनकर समझकर म्यूचुअली दूर करना है। ये जो कहते रहती है ना लेडीज कि भाई मुझे सिर्फ सुन लें, क्यों सिर्फ सुन लें भाई, आपको जानवर हो गया आपको सिर्फ सुन लें? इंसान को सुनने का मतलब है, समझिए ना प्रोसेस, क्यों लोग सुनते हैं, एक बोलता है दूसरा सुनता है, दूसरा बोलता है आप सुनते हैं, मसला है हल करना। तो ये जो कहते रहते हैं कि जी सिर्फ सुनना होता है, ये आपको समझना है इस बात को कि ये मर्द और औरत में हमने खामखाई किसी बंदे ने हमको ये बता दिया कि जी औरतें सिर्फ चाहती हैं उनको सुन ले, और मर्द जो है वो चाहते हैं जी मैं जब सुनूँ तो मैं उसको हल करूँ। अबे दोनों मिलकर इंसान के बच्चे बने, मर्द और औरत की इस स्टेरियोटाइपिंग से बाहर निकलें। दोनों इसलिए कम्युनिकेट करता है इंसान की चीज़ों की समझ आए, और अगर कोई मसला है तो उसका हल हो। सिर्फ सुन लेने से, आपको एक चीज़ तकलीफ दे रही है मेरी, मैं सुन लेता हूँ तो क्या आप ठीक हो जाएंगी? नहीं, मैं फिर वो करूँगा, फिर आपको तकलीफ होगी। तो आप मुझसे बात करेंगे कि मुझे ये चीज़ तकलीफ देती है, तो मैं अपने आप में एडजस्टमेंट्स ला के उसको ठीक करूंगा, तो आपको इरिटेशन नहीं होगी, दोबारा ये बात करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगली दफ़ा कोई और मसला होगा, स्कूल का मसला है, बच्चों का मसला है, फाइनेंसिस का मसला है, आपकी फैमिली का मसला है, मेरी फैमिली का मसला है, जो भी है आप बात करें, उस मसले को हल करें और आगे बढ़ें। स्टूपिड थोड़ी हैं हम इस दुनिया में, या हमने औरतों को इतना स्टीरियोटाइप किया हुआ है कि वो पागल हैं, या हमने मर्दों को इतना स्टूपिड किया हुआ है कि भाई मेन आर लाइक डॉग्स। ये स्टूपिड बातें जो हमने की हुई हैं, इस वजह से ना मर्द मर्द बन पा रहा है, ना औरत औरत बन पा रही है। और वो मैं कितने ही ब्रिलियंट ब्रेन्स लेडीज़ को जानता हूँ जो सब्जेक्ट्स में PhDs हैं, जो बिजनेस में काम करती हैं, फॉर्च्यून 500 में काम करती हैं, जो टीचर्स हैं, जो पढ़ाती हैं, वो इतनी स्टूपिड स्टूपिड बातें करती हैं क्योंकि उनको ये बातें किसी ने बता दी हैं। वो जितनी वो स्मार्ट हैं और जितने उनके बिजनेस में रिजल्ट्स हैं, वो उनकी लाइफ में नज़र ही नहीं आ रहा, ना वो सोचती हैं तो उसमें नज़र आ रहा है। तो दूसरी तरफ मर्द हैं, इतने ब्रिलियंट हैं, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं, इतने बड़े बड़े प्रोफेशंस के अंदर हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज लीड कर रहे हैं, और फिर वो मर्द होने के नाते इतनी स्टूपिड बातें करते हैं अपनी रिलेशनशिप्स को लेके, अपनी फैमिली को लेके, कि बंदा हैरान हो जाता है कि यार ये वही लोग हैं जो ये सारा कुछ करते हैं, क्योंकि इनको भी स्टीरियोटाइपिंग, नहीं भाई हमें तो ये चाहिए, हमें तो वो चाहिए। मर्द किसने कहा है कि आपको ये चाहिए, आपने सुन लिया बस। तो आप दोनों, हम इंसान बनेंगे, इंसान कम्युनिकेशन करते हैं, उस कम्युनिकेशन का कोई एंड रिजल्ट निकलता है, फिर आप आगे बढ़ते हैं। दो बंदे एक साथ अगर इंसान के अंदर, जैसे खान साहब और आज़ाद साहब, अगर यही कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हैं, तो मैं पर्सनली एज अ ह्यूमन बीइंग आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए मैंने इनकी आपस में दोस्ती कराई, दोनों को एडजस्ट करवाया, एक इमोशन काबू में रखे, दूसरा लॉजिक काबू में रखे, साथ चलने की कोशिश करें। जब ये कंफर्टेबल हुआ आपस में, तो मैं अपने साथ भी कंफर्टेबल हो गया, दुनिया के साथ भी कंफर्टेबल हो गया, रब के साथ जो मेरा रिश्ता है मैं उस पर भी कंफर्टेबल हो गया। जो मैं करता हूँ उसके बदले मुझे कुछ मिल जाता है, जो मैं नहीं कर पाता उसके बदले मुझे नहीं मिलता, तो मैं कोशिश करता हूँ उसको पाने की। तो इंसान होने के नाते अगर मैं अपने साथ कंफर्टेबल हो गया हूँ, तो दूसरे इंसान के साथ भी, मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो मेरे साथ फजूल बातें करता है या बार बार एक जैसी बात करता है, या मैंने उसको छोड़ दिया सजा दिए बगैर, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं जो मेरे साथ बिजनेस करता है, पार्टनरशिप करता है, उसमें वो अपना डील नहीं करता तो मैं उसके साथ प्रॉपर डील नहीं करता। ये और बात है कि मैं बहुत सारी लेवरेज देता हूँ उनको, ये भी सही सच बात है कि मुझे भी जैसा मैं हूँ बहुत सारी लेवरेज देते होंगे। तो ये सब मिलकर ऐसे ही चलता है और ये रिश्ते 30 साल से चल रहे हैं, इसमें कोई लड़ाई नहीं है। इसलिए जो लोग मुझे, औरतें कहती हैं कि जी रिश्तों में लड़ाई होती है, मैं नहीं मानता। जो मर्द कहते हैं जी रिश्तों में तो जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ लड़ाई होती है, इसका मतलब है आप डफर हैं। तो इसका मतलब कहीं पर भी, क्योंकि मेरे 30 साल से कोई ना मर्दों के साथ कई लड़ाई हुई है, ना किसी औरतों के साथ लड़ाई हुई है, और जिनके साथ लड़ाई कभी हुई है उनके साथ लंबे रिश्ते मेरे नहीं चले कभी भी। क्योंकि अगर इसका मतलब है कि नेचुरली चीज़ें एडजस्ट नहीं हुई, या नेचुरली वो लोग इतने मेच्योर नहीं है कि इस पे काम करें और आगे बढ़ें। नाराज़गी और लड़ाई कभी होती भी है इन लोगों से, तो उन्हीं बातों पे होती है जिससे हम पहले बात कर चुके हैं, और उसकी वजह से मैं सख्ती करता हूँ लोगों के ऊपर। नई मसला तो कोई ला ही नहीं रहा, क्योंकि हम तो वेजिटेट कर रहे हैं, बढ़ तो रही नहीं जहनी तौर पर। इस पूरी बात को जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मेरा नहीं ख्याल किसी को कोई बात नहीं समझ आई होगी। आपका क्या ख्याल?
7: सही कह रहे हैं।
13: कहीं कोई चीज जो आपको नहीं समझ आई, आपको लगता है यार ये गलत है या बैलेंस से बाहर है?
7: नहीं।
13: कहीं आपको लगता है कि कोई जो हमें बेवकूफ बना रहे हैं स्टेरियोटाइपिंग, और ये जो औरतों के मैगजीन होते हैं जिसमें अजीब अजीब बातें वो बताती रहती हैं, और वो मर्दों के जो स्टूपिड मैगजीन होते हैं जिसमें वो अजीब अजीब बातें, मर्द ऐसा होता है औरत ऐसी होती है, अरे भाई आप वो वाले मैगजीन में आने वाली औरत और मैगजीन में आने वाले मर्दों को ऐसे काबू करना है, औरतों को ऐसे काबू करना है, ये बेसिक बातों को, इससे ऊपर उठ जाते हैं इंसान जब वो साथ चलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। हर आदमी, हर मर्द एक जैसा नहीं होता, इन बातों को समझें। हर औरत भी एक जैसी नहीं होती, इन बातों को समझें। हर मर्द की वो नीड्स नहीं होती, हर औरत की वो नीड्स नहीं होती जो दूसरी लोग समझते हैं। मुझे ये सब कैसे पता है? क्योंकि सब मुझे बताते हैं। जितने लोगों ने आज तक मुझे कहा औरत को तो ऐसे होता है, औरत तो ऐसी होनी चाहिए फलां, मैंने कहा नहीं, ये आप खुद आपने सोचा हुआ है, आपको किसी ने बताया हुआ है, आप खुद ऐसी हैं इसलिए आपको लगता है सब ऐसे होने चाहिए। मैं 900 और लोगों को जानता हूं जो ऐसी बिल्कुल नहीं। फिर वो कहती हैं अच्छा ऐसे भी होता है वैसे भी होता है। हाँ होता है, आपको नहीं पता तो इसका मतलब है आपने 900 और लोगों से बात नहीं की इसलिए आपको नहीं पता। मर्दों के बारे मर्द मुझे कहते हैं जी मर्द ऐसा होता है वैसा होता है, मर्द बीवी से ये चाहता है, मर्द रिलेशनशिप में नहीं चाहता, मैं कह नहीं, मर्द को बीच में से निकालो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसा चाहते हो, 900 और मर्द ऐसे नहीं चाहते। स्टडीज़ ये बताती हैं, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये बताती है, दे आर टोटली डिफरेंट ह्यूमन बींग्स। आपको क्यों नहीं पता? बिकॉज आपके पास वक्त ही नहीं है। आप अपनी ख्वाहिशात से बाहर निकलेंगे, आप अपनी लॉजिक और रीजनिंग को जब एक्टिवेट करेंगे, आप लोगों को गौर से देखेंगे कौन मर्द और कौन औरत कैसा है, वो किस चीज़ को पसंद करते हैं, किस चीज़ को नहीं पसंद करते, वो क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते, क्या वो बिल्कुल नहीं दे सकते या दे सकती, आप उस रास्ते पे चलेंगे क्यों, क्या ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा बटन है जो आप दबाते हैं उससे वो बिलबिला उठता है या उठती हैं, आप ये हरकत दोबारा नहीं करेंगे या करेंगी, क्योंकि इसके बदले जो आपको मिलता है वही मिलेगा। सो जो कुछ भी आप तक नहीं पहुँच रहा, मर्द हैं या औरत, रिश्तों में हैं आप या किसी किस्म के भी आप मामला है आपका, आपके पास जो चीज़ें नहीं पहुंच रहा वो आपके ना जानने की वजह से नहीं पहुंच रहा, या ना डील्स कर सकने की वजह से, या किसी चीज़ पे रिजिड होने की वजह से पहुंच रहा है। अब ये बात तो फिर हम क्या करें, आप जो भी आपको चाहिए वो मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, उसके लिए आपको एनवलप को पुश करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी मर्जी के लोगों से मिलना पड़ेगा, उसमें जो आपको चाहिए उस किस्म के लोग और उस किस्म की चीज़ें आपको 100% मिलेंगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन इसके लिए सब्र भी करना होता है, रास्ता भी देखना होता है, इमोशनल ड्रामे भी नहीं करने होते। और जिस किस्म की ज़िंदगी आप चाहते हैं, कोई बंदा है वो कहता है जी मैं शादी टाइप हूँ, लेकिन वो कहता है जी मैं कर नहीं सकता, तो वो बेवकूफ़ है। अगर वो शादी टाइप है तो उसको शादी करनी चाहिए, और जिस किस्म के इंसान से करना चाहता है वो उस किस्म के इंसान से करनी चाहिए। अगर आपको अभी तक नहीं मिला तो क्या इस दुनिया में आप घास खा रहे हैं, या आप कहीं नहीं मिलते, या कोई जॉब नहीं करते, कोई बिजनेस नहीं करते, कोई कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है आपकी, कोई आप बाहर नहीं जाते, कोई आपके रिश्तेदार नहीं है किसी बिजनेस में, किसी फोरम पे या किसी जगह, कोई जहाज में आपने कभी सफर नहीं किया, कभी आपको कोई इंसान नहीं मिला, इसका मतलब ये आप अपने आप से बाहर निकलें, अपना फेवरेट होना खेलना खेलना बंद करें, आपको हर चीज़ मिल सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ प्राइस होगी जो आपको पे करनी है। प्राइस पे किए बगैर आप 5-स्टार होटल में खाना खा सकते हैं, बताएं आप?
7: नहीं।
13: प्राइस पे किए बगैर आप दुनिया की फाइनेस्ट वाइन पी सकते
7: हैं? नहीं।
13: आप कई लोग वाइन पीना ही नहीं चाहते, या उनके लिए वाइन है ही नहीं, तो ये और बात है। लेकिन कोई भी चीज़ फाइनेस्ट करने के लिए या अपनी मर्जी से, मुझे ज़िंदगी में जो चाहिए था मैं आपको अपनी गारंटी देता हूँ, रब भी सुन रहा है, हम भी सुन रहे हैं, सब कुछ है, मुझे जो कुछ अपनी ज़िंदगी में चाहिए और जिस चीज़ के लिए मैंने कोशिश की, मुझे वो 100% मिली। जो चीज़ इस वक्त मेरे पास नहीं है, मैंने उसके लिए कोशिश नहीं की, एक दूसरी हाफ हार्टेड की होगी, लेकिन वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी। जो कुछ मेरे पास है ये सब के लिए मैंने कोशिश की, रब ने इसमें बरकत पैदा की और मैं इससे बेइंतहा खुश हूँ, और मैं कई चीज़ों को बदलना ही नहीं चाहता। मैं बदलना चाहूँगा इन चीज़ों को तो देखेंगे, लेकिन ये बात मैं किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, ना मैं ये कह सकता हूँ कि ये चीज़ नहीं होती वो चीज़ नहीं होती। डम इंसान की और औरत की पहली निशानी, दुनिया में मोहब्बत कोई चीज़ नहीं है, दुनिया में मोहब्बत नहीं होती, दुनिया में दोस्ती कोई किसी के लिए नहीं करता, दुनिया में कोई किसी इंसान के लिए कुछ नहीं करता, दुनिया में कोई किसी के लिए अपना एफर्ट टाइम पैसा ये कुर्बान नहीं करता, दुनिया में ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, दुनिया में कोई हर कोई सिस्टम, ये निशानियां होती हैं कि आपने अपना दिमाग बंद कर लिए और अब आप आगे आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का आपने जड़ मार के रख दी। अगर मैं ये सारी बातें मानता तो मेरी ज़िंदगी में कभी मिरेकल्स नहीं होते। मेरे लिए लोगों ने वो किया जो उन्होंने सगे माँ बाप के लिए नहीं किया, सगी औलाद के लिए नहीं किया, उन्होंने दोस्ती में मेरे लिए वो किया, सिर्फ इंसान दोस्त होने के नाते उन्होंने मेरे लिए वो किया, मैं कैसे मान जाऊँ? क्योंकि मैंने अपने आप को एक वक्त तक, जब तक मैं सबकी तरह सोचता था तो वही हो मेरे साथ होता था जो सबके साथ होता है, अब मैं सबकी तरह नहीं सोचता तो मेरे साथ वो होता है जो किसी के साथ नहीं होता, और उनके साथ सिर्फ होता है जो इस तरह सोचते हैं, समझते हैं और इस तरह जीते हैं और इसकी कीमत अदा करते हैं। जो कुछ मैंने पाया मैंने उसकी प्राइस पे की, आगे भी अगर मैं जिंदा रहा जो कुछ मैं पाऊंगा मुझे उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी, ये कानून है, कुदरत है, दिस इज़ हाउ द लॉ ऑफ द यूनिवर्स ऑपरेट्स। अगर मैं इसको नहीं मानना चाहता आपकी मर्जी है।
11: और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी, दिस इज आजाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना जरूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आजाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आजाद। तो हम याद रखिएगा जिंदगी तो फिर मिलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियां पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।

0: दी है, आप क्यों खड़े हुए हैं? इसी तरह लोग रिश्तों के ट्रक के आगे खड़े जाते हैं, गलत बंदे के साथ, उसको खुश करने के लिए या उसके नाम अपने साथ लगाने के लिए या उसकी पर्सनैलिटी के लिए या उसके पैसों के लिए लोग जो हैं वो इस काम में पड़ते हैं, उसके बाद मार खा रहे होते हैं और जलील हो रहे होते हैं। तो खुद हमारा किया धरा है, फिर कहें जी आप सिंपथी नहीं है हमारे साथ। मैं क्या सिंपथी करूँ, क्या सिंपथी करूँ? मुझे तो इस बात की सिंपथी है कि आप इतना कहने के बावजूद आपने अभी तक अपना सिम कार्ड एक्टिवेट ही नहीं किया ब्रेन का। मैं तो नहीं इम्प्रेस होता बिजनेस से, पैसों से, डिग्रियों से। आप इंसान होने के नाते खाना आपके साथ मैं खा लूं, आप इस काबिल भी कई लोग नहीं होते। मैं आपसे बात कर लूं और उस बात का कोई मतलब बन जाए और उस फ्यूचर में आगे जाके आपके साथ मैं कुछ चीज़ कर सकूं, तो आप कई लोग तो इस काबिल भी नहीं होते। वो वैसे ही बात करते हैं, वैसे ही कुछ चीज़ें करके घंटे दो के बाद गायब हो जाते हैं, उसके बाद मेरा 2 घंटे ज़ाया कर दिया आपने। ना वो कभी मिलेंगे, ना बात करेंगे, ना किसी चीज़ की तरफ जाएंगे। और कई मेरे जानने वाले ऐसे हैं जिससे भी मिल के आते हैं, कहते हैं कमाल बंदा मिला, वो ऐसे कर देगा, वैसे कर देगा, उसने ये चीज़ कर दी है, अब वो ऐसे हो जाएगा, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है। कुछ भी नहीं होता, ठुस। कितने घंटे उनके ज़ाया हो गए। तो हर एक की तरफ तब आदमी देखता है जब आदमी को अपने काम पे अपना रास्ता क्लियर नहीं होता है। और उसके
1: तो
0: बाद हाँ बोलो।
1: आजाद ना, जो इस तरह के जो लोग आपके साथ डील करते हैं, जो आपका टाइम दे, यानी इसका दुख होता है आपको बाद
0: मैं
1: में?
0: नहीं, अब क्यों दुख होगा? जब अगले दिन फैसला करके दिया कि अगली दफ़ा जब तक ये कुछ करेंगे नहीं, कुछ काम नहीं होगा, कुछ करके नहीं दिखाएंगे, मेरे पास वक्त ही नहीं उनके लिए। फैसला जो हो गया, दुख किस बात का होगा? लर्निंग के बाद दुख नहीं होता आदमी को, बार बार वही लर्निंग करेंगे तो दुख होगा। अपेरेंटली हर वक्त मुझे किसी, कभी कभी मैं डाउन होता हूँ, लोग समझते हैं पता नहीं कुछ बड़ी गड़बड़। बड़ी गड़बड़ क्या होनी है मेरे साथ? मेरा क्रिएटिव काम नहीं हो, मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ वो मैं लिख नहीं पाया, तो इसलिए शायद मैं थोड़ा सा डाउन हो सकता हूँ। जो चीज़ें थी, 2-4 मैंने सोची हुई थी, पूरी प्लानिंग करके मैंने दी हुई थी, उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं किया गया। 2-3 जो बिजनेसेस हैं उसकी वजह से अब रिजल्ट वो नहीं आ रहा जो आना चाहिए, अब मुझे फिर मेहनत करनी पड़ेगी, इससे मैं शायद थोड़ा सा डाउन हो सकता हूँ। हेल्थ कभी ऊपर नीचे हो जाती है, एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, कुछ और चीज़, उससे मैं थोड़ा डाउन हो सकता हूँ। वरना और क्या है? क्या मुझे जब भी लोग कहते हैं आप तक परेशान हैं, चुप हैं, फलां हैं आपको, तो मैं कहता हूँ दुख, तकलीफें, परेशानियां तो सारी आप लोगों की किस्मत में है, मुझे तो वो है ही नहीं। वो तो आपने खुद अपनी किस्मत में लिखवाई हुई है, मुझे वो वाले इश्यूज नहीं है। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाऊंगा, कल ठीक हो जाऊंगा, काम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, खाना खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। मेरा तो रोना धोना है ही नहीं, रोने धोने सुनने के लिए तो मैं पैदा हूं। पहले 30 साल रो धो लिया ना, बहुत रो लिया मैंने, बहुत थक गया मैं, बहुत फजूल लोगों को टाइम मैंने ज़ाया कर दिया, बहुत मर्द औरतें बच्चे बड़े छोटे सब देख लिए मैंने, बड़ा टाइम मैंने दुनिया पे ज़ाया किया। लेकिन उस ज़ाया नहीं हुआ, उस ज़ाया होने से मेरी ज़िंदगी बन गई, क्योंकि मुझे ये सब कुछ देखना था। बुरी से बुरी जगह पर मैंने मिला, जिन लोगों को, जिन प्रोफेशंस को लोग अपेरेंटली इतना बुरा समझते हैं, जिन लोगों को इतना बुरा समझते हैं, मैं उन लोगों से मिला, मैंने उनके साथ वक्त गुजारा, मैंने लोगों के इंटरव्यूज़ लिए, उनसे बातें की, क्यों ये ऐसा करते हैं, क्यों ऐसा होता है, वो कैसे ऐसे जीते हैं, ये सब मैंने देखा, जाना भाला। हर मज़हब के बंदे को मैं मिला, हर किस्म के लोगों से मैंने बातचीत की, हर किस्म के मैंने बातें सुनी। मेरे लिए बहुत कम ऐसी कोई चीज़ होता है कि मुझे सरप्राइज़ हो जाए, क्योंकि इतना कोई देख लिया, सुन लिया मैंने, और अभी भी बहुत कुछ है जो मैं साथ साथ अभी जो चीज़ें कर रहा हूँ, अभी और भी देखने सुनने को मिलेगा। लेकिन कुछ नया जब तक नहीं मिलेगा, पुराने लोग फिर कहते हैं जी आप हमारे इर्द गिर्द बोर हो जाते हैं, आप फलां होते हैं फलां, तो वो आप हरकतें ऐसी कर रहे हो, आप नई को काम करो, नई एक्साइटिंग चीज़ करो, को फन करो, नहीं बोर होंगे आपसे। अगर कोई बोर होता है तो कसूर आपका है, और अगर उसके बावजूद कोई बोर होता है तो फिर जाके अपना इलाज कराए, जहनी तौर पर कोई उसका कोई केमिकल लोचा चल रहा है। ठीक है,
1: ठीक
0: ठीक है। कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने दिए, और घंटा गुजरने का पता ही नहीं चला, और इतने काम की बातें लोगों तक पहुंच गई।
1: ज्यादा ये सब कुछ आपकी वजह
0: हाँ
1: से।
0: जी, ये मेरे पे डाल दिया करें आप, लोग सारी जिंदगी मेरे पे पुठी चीजें डालती हैं, आप सीधी चीजें मेरे पे डालती हैं।
1: ज्यादा वाकई सब कुछ आपकी वजह
0: चले,
1: से।
0: अगर इतना जब आप अच्छा काम करते हैं ना, फिर हम डिजर्व करते हैं कि हम एक फड़कता हुआ ट्रैक सुने, और वो ट्रैक इतने दिलो जान से सुने कि हम हिल हुल जाएं, आवाज, अंदाज, शायरी और एक एक चीज को गौर से सुनने वाली को पीस पेश करते हैं आज आपके लिए। ठीक है,
1: زبردست.
0: چلیں آ جائیں اور جی غور سے سنیے گا جی. عام ٹریک جس کو آپ جیسے سنتے ہیں وہ ٹریک ویسے نہیں ہوتا اکثر. وہ عائشہ جی یا اکثر لوگ میں

0: गाने को एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बारे में बात करता हूँ, तो कहते हैं बहुत मज़ा आया, ये शो बहुत अच्छा था। ठीक है जी, सुने फिर ऐसी चीज़ जो रात सोने से पहले सुन सकते हैं आप, दिन को सुन सकते हैं, जब आपका दिल, बड़े अरसे के बाद कोई ऐसी चीज़ मुझे जब टकराती है उसके, मैं बार बार उसको सुनता रहता हूँ, और जब भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ अपने वक्त के साथ, तो फिर मैं ये सुनता हूँ। गौर से सुनिएगा, एक एक शेर, एक एक लफ्ज़ और अंदाज़, और अपने काम का जब कोई मास्टर होता है ना, मतलब उससे बेहतर चीज़ नहीं की जा सकती, तो फिर पिनिकल पे जाके एक्सेलेंस के ऊपर ये ऐसी चीज़ें क्रिएट होती हैं। और पहली दफ़ा आपको ये पता चलेगा कि रीमिक्स को भी अगर अकल इस्तेमाल करके यूज़ किया जाए गाने में, तो झनकार गीत माला खाम खा छण छण करने से, जिंदगी में छणकड़े बजाने से रीमिक्स नहीं हो जाती चीज़।
1: और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज आजाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।

0: इल्जाम मुझे पे आएगा, मैंने कुछ नहीं किया। तो पैगंबर को अपनी जिम्मेदारी अदा करने की इतनी फिक्र थी कि कहीं कयामत के दिन कोई मेरा गिरेबान ना पकड़े कि मैंने नहीं बताया। तो आपको तसल्ली दी जा रही कि आप फिक्र नहीं करें। अब मसलन अगर एक माहिर डॉक्टर किसी मरीज को देख के ये कह दे कि ये बचने का नहीं, तो इसका क्या मतलब है कि अगर वो मर जाए तो डॉक्टर की शामत? किसने कहा था इसलिए वो मर गया? क्या डॉक्टर के कहने से कोई मर जाता है? नहीं। तो ये जो कहा गया है ला यूमिनून, तो इसका ये मतलब नहीं कि इसमें पैगंबर का कोई कसूर है या उसके पहुंचाने में कोई कमी है। ये उनका हाल खोल के बयान किया जा रहा है कि जिन्होंने इनकार कर दिया है वो नहीं मानेंगे, आप नहीं परेशान हो। फिर उसके बाद आगे फरमाया, खत्म अल्लाह, मोहर लगा दी अल्लाह ने। खत्म, खत्म का माना होता है सील करना या मोहर लगाना, किसी चीज को इस तरह बंद कर देना कि ना उसके अंदर कुछ जा सके और ना अंदर से बाहर कुछ आ सके। तो अल्लाह ने उनके दिलों को सील कर दिया है, अब उनके दिलों के अंदर ईमान नहीं जाएगा, नूर नहीं जाएगा, नूरे हिदायत अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि दिल बंद हो गए उनके। खत्म अल्लाहु अला कुलूबहिम, उनके दिलों पर, कुलूब कल्ब की जमा, और कल्ब अरबी जबान में कहते हैं उलट पुलट होने को, क्योंकि दिल भी इंसान के कैसे होते, एक हालत पे नहीं रहते, कैसे होते दिल? एक हालत पर नहीं रहते, दिलों की हालत बदलती रहती है। कभी आप एक चीज को, एक खाने को बहुत इंजॉय कर रहे थे और कभी दूसरे वक्त में उसी खाने को आपका दिल नहीं चाह रहा था। अब भाई खाना तो वही है, आपको क्या हुआ? आपका दिल बदला हुआ है। तो दिल को दिल कहते ही इसलिए है कि वो एक हाल पर नहीं रहता, उलट पुलट होता रहता है। इसीलिए हमें दुआ मांगनी चाहिए, या मुकल्लिब अल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, ए दिलों को उलट पुलट करने वाले, हमारे दिल को अपने दीन पर जमा दे। तेरे दीन पर जब आए ये दिल, तेरी तरफ मायल हो, तो फिर ना उल्टे, फिर आगे पीछे ना हो, बस वो फिर उसी पर ही ठुक जाए। ये दुआ भी कुरान और मसनून दुआ की किताब में लिखी हुई है। खत्म अल्लाहु अला कुलूबहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है। वा अला समइहिम, और उनके कानों पर। सीन मीम आयन सम का लफ्ज कान और समाज दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। क्या कहा मैंने? सम का लफ्ज कान और सुनने की सलाहियत दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अब कुलूब जमा है, आगे अबसार भी जमा है, लेकिन सम का लफ्ज जो है ये वाहिद है, और कुरान पाक में जहां भी सम का लफ्ज आया है सिंगुलर ही आया है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: अस्सलामु अलैकुम। मज़ीद मालूमाती तालीम और तरबियत पर मबनी सीरीज और लेक्चर्स के लिए समात फरमाते रहिए इंस्पायर FM।
2: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: The Islamic calendar is purely lunar, meaning it is based on the phases of the moon. Because of this, the Islamic year is about 11 days shorter than the standard solar year.
4: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
5: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.

0: وذلك أضعف الإيمان.
1: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Top's Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट यूके ऑफिस 03001234@kot.org.uk।
3: Head over to inspirefm.org to check out our new website. Missed a show or want to listen back to an old one? Want to know about upcoming schedules or maybe keep up to date with events going on? Don't worry, it can be found right here on www.inspirefm.org. As well as that, have a question, query or comment, find the contact details right here and become part of your community radio station. For the community, by the community.